0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10 और रेडियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: इट्स 7 o'clock। आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन। जन रंग अमन।

रेडियो अमल जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशाले। द मरगानो फागो आवाजुना आओ द फिजा ताजा सुकून। दा वक्ते चिखपल जरत सुकून वर कड़े औखपल वरस बख सोच सरा पेल कड़े। राजे चे यूशु द खुशाले द मुस्का और मुस्बतु खबर सरा। तासो अवरे रेडियो अमन 88.4।

0: सौ 52 65 340। पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।
1: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज। हर कदम
3: या शकुना अव वहमुन जलत रातलल दशपी खूब नरातलल यानि कि स्तासु द जुन्ना खुशाली उरकदा स्तासु द जुन्ना द खुशाली लफ्ज रक्षवे दे और द डेर टेंशन डिप्रेशन और द एंजाइटी लवजी स्तासु जुन डेर बेसकुन दे कचरे ता सुखपल सकुन ग्वाली न द मैदी द पारा द लाइपोजाइम शरबत और द टेंशन डिप्रेशन द एंजाइटी द पारा द जिनको पास दवाई जरूर इस्तेमाल करें।

0: तड़ाई माजे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जानते से तार खाना पर शापर के हम इश्मा वाशिंग पाउडर ओखस्ते थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस्तर अंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तार खाना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श कड़ा ले होचे कलाना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिखड़े थी और स्टोल कुर वाला नकवाशोल थी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कोरता जहर सराब रहा वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे कहना दाओ तो दफा बने वलशे अंदरून लकी गेट जान से बेगाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला विजी
0: पुरुष अक्सर गिलार तक की जदा
1: खड़े थे और स्टोल कुर वाला नकवाश बोल दे
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कोरता जहर सराब रहा वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने वलशे अंदरून लकी गेट जान से बेगाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला विजी।

0: मैं हूँ असमनूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम
2: अहमद भाई जहो हर वर्ष शिशत गोरम पमहमी वर्ष पवरस दानी जातीगी नख को लाश्ता और नड़केगी चिकोरना बाहर उजम
3: हो रे अफगान न दे पकार मखदानो द पारा इश्मा इकनी ड्राप इस्तेमाल का देर जरबदे महना दाने हतमशी और मखबद सफा और कुलखारी
2: मनना अहमद भाई उस इश्मा इकनी ड्राप खाम अहलम जहवाड़म जमा मखदाने न सफशी और खैस्तकारी अहमद भाई दुकान पता उखाया
3: होरे दुकान पता इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल।

0: जी हाँ, 0330 0344 717 डायल
1: कम मालारा क्रसो गुलु नयो न्यास बिन शांति
0: भरदर सरवली कैसे फरद्रे द्रे से फर द्रे।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: द करक अनूर शो को अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पखपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेओलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पर शमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस अल चिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

जी बिल्कुल करण, हाँ नवाज रुसरा और वह वापस दर्द और रसा बिल्कुल रेडियो मन करक सराव से मो सराव से प्रोग्राम वो सजार के